एसएस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सेंजा।

0: तानन फोने खले पनि आफै विवरण खैममै आपिन खबै भने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खैममै आरि सुमी बैंक आफै भने आरि
1: सतर्क तन छजिर देख्या पर्दैन
2: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्यारे जन हेदरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

हजुर कार्यक्रम को क्रम में राखी यह छोटो व्यापारिक विश्राम संगे फिलहाल स्वागत करते कार्यक्रम का मृतिका भाग में आदवहर आज हम कार्यक्रम का मृतिका भाग को बुधवार व्यवसाय में रहकर सुमधुर खाल भाका कार्यक्रम में जोड़ते अगाड़ी बढ़ी रहें विशेषकरी फरक खाल भाका कार्यक्रम में स्थान दी अगाड़ी बढ़ी रहें रेति बेला को क्रम में हम अर्क भाका पर्सिश सही भाका संगे हम पुनः उपस्थित होने यहां हमी संगे रहन्हला।